0: नैराश्य, बेचैनी, जोपे की समस्या, भीति, चिड़चिड़ आता मानसिक आजार लपोयच नहीं उपचार क्या समाधान शोधा।
1: डॉक्टर अमोल पाथरीकर मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
0: सतत चिंता, अति विचार करने, भीति बांटने, धास्ती बसने, भास होने, घाबरने, संशय करने, शंका येने, चिड़चिड़ बना, एक गोष्ट पुनः पुनः करने, मंत्र चाळेपणा, व्यसन रीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
1: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।

गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर, आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे तुमची संडे वाली मॉर्निंग गुड करायला. सो कैसे हो मंडळी, एकदम मस्त मजेत फर्स्ट क्लास असालच ना? असाल असाल, क्योंकि यार संडे के दिन ना तो हर कोई एकदम मस्त फर्स्ट क्लास होता है. सो संडे मतलब सुकून का दिन होता है और सुकून हमें चाहिए होता है नींद पूरी करके. लेकिन क्या करे, कम वक्त ये नींद का और संडे का क्या ही ऐसा 36 का आंकड़ा है पता नहीं चलता. जब मंडे टू सैटरडे या फ्राइडे ऑफिस होता है 9 बजे 8 बजे या 10 बजे तो अच्छी खासी नींद आती है, लगता ही नहीं कि यार बेड से उठो. लेकिन जब संडे के दिन कुछ नहीं होता है करने को, हम सोचते हैं कि आज मैं तो मेरी नींद पूरी करूंगा. लेकिन उसी वक्त ना तो नींद नहीं आती है और फुजुल में सुबह 7 बजे से उठकर हम बैठ जाते हैं. खैर, ये 36 का आंकड़ा कब सॉर्ट आउट होगा पता नहीं, लेकिन आपका मूड सॉर्ट आउट करने के लिए बंदा आपके पेशे खिदमत में हाजिर है बढ़िया से गाने पेश करने के लिए. इसी के साथ आज संडे है तो 90s वाले सफर पर आपको ले जाने के लिए. तो 90s के लोगों और भाई और बहनों, 90s के सफर में जाने के लिए तैयार हो जाइएगा इस 90s वाले स्पेशल शो में जिसका नाम है संडे स्पेशल 90s वाला शो विद आरजे अदनान. एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM.

0: संडे संडे संडे फंडे फंडे फंडे, त्यासाठीच मी तुमच्यासोबत आलोय ना. आरजी अदनान तुमच्यासोबत आहे ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. आणि संडे मतलब कैसा, बहुत कुछ करने के प्लान्स होते लेकिन कभी पूरे हो ही नहीं पाते. अगर संडे सुन पाता तो मैं उसे ये कहता, डियर संडे, तेरा इंतजार पूरे हफ्ते होता है. नींद पूरी करने का टारगेट जो होता है, जो कभी पूरा हो ही नहीं पाता. सुबह की धूप भी थोड़ी नरमी लेकर आती है और चाय, चाय तो जैसे आज दिल के और करीब आती है. पता नहीं क्यों यार, आज टाइम थोड़ा फास्ट चलता है, मानो सुकून का टारगेट इसे भी पूरा करना हो. संडे मतलब सुकून, एक ऐसा सुकून जो कि छोटी छुट्टी लेकर आता है और थोड़ा ज्यादा फील होता है. लेकिन ये सुकून भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता. शाम ढलते ही नोटिफिकेशन वापस आने लगती है, ईमेल याद दिलाने लगते हैं कि कल ऑफिस भी है, और दिमाग दिमाग तो फिर से मंडे की टेंशन से भर जाता है. कभी कभी लगता है संडे कोई दिन नहीं है, बस एक पल है, एक ऐसा पल जो आया मुस्कुराया और फिर वही कैट रेस, वही रूटीन लाइफ, और हम फिर से अगले संडे का इंतजार करते हुए. डियर संडे, अगर तू कह पाता तो ये कहता मैं तुझे. खैर, ये तो मेरे दिल के जज्बात थे जो मैं एक संडे को कहना चाहने वाला था, बट क्या करे, संडे तो सुन ही नहीं पाता. खैर, आप तक पहुंचे यही सही बात है. स्टे ट्यून विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम.
1: ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है.

0: गुड मॉर्निंग आरजे अदनान आपके साथ है संडे स्पेशल में।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है आरजे अदनान। अब एमजीएम पे सुनो धमाल करें ये संडे स्पेशल।
0: आज कुछ अलग नहीं करते यार, आज कुछ भी करना जरूरी थोड़ी है। खाली बैठते हैं, हवाओं को महसूस करते हैं, उसे कॉफी या चाय के सिप का एक घूंट उठाते हैं और बिना किसी काम के, बिना थोड़ा कामयाब फील करते हुए रिलैक्स करते हैं। आज संडे है, वीक का वो एक दिन जहां टाइम कोई डेडलाइन नहीं होता, जहां मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम और आंखों का आराम ज्यादा होता है। जरूरी थोड़ी है कि हर बात का जवाब दो, जरूरी तो ये है कि दिल को शांति दो। आज कुछ लोग बालकनी में बैठकर परिंदों को देख रहे होंगे, कुछ अपने प्लांट से बात कर रहे होंगे, तो कुछ लोग शायद बस घर के कोने में पड़े पड़े सपने सोच रहे होंगे कि बिना किसी प्रेशर के कैसे जिया जाए। ऐसा होता है ना, अगर आप उन लोगों में से हो जो अभी भी काम के बारे में सोच रहे हो तो भाई छोड़ दो यार। संडे का मतलब ही होता है सोचना भी ऑप्शनल होता है, मतलब सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी बारे में। अभी बस आप हो, आपकी सांस है और ये हल्का सा म्यूजिक है जो आपको रिलीफ फील करवाता है। जिंदगी भागने की चीज नहीं है तो कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। तो संडे हमें वही एहसास दिलाता है कि भाई तूने बहुत वीक में भाग लिया, आप एक दिन रुक जा, खुद के लिए टाइम दे। तो खुद के लिए टाइम देना जरूरी है तो दीजिएगा और संडे को एकदम फन डे बनाइएगा। और बाकी तो एंजॉय कीजिएगा आरजे अदनान के साथ 90s वाला संडे का शो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: और बहनों जरा आंखें बंद कीजिएगा और सोचिएगा अपने आप को 90s की उन गलियों में। आरजे अदनान आपके साथ आया है संडे स्पेशल में आपको 90s की सफर करवाने के लिए।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है। आरजे अदनान अब एमजीएम पे सुनो धमाल करे ये संडे स्पेशल।
0: जस्ट इमेजिन यार, एक लड़का साइकिल लेके आ रहा है, पहना है उसने ब्राइट ऑरेंज शर्ट, कॉलर खुला हुआ है, स्लीव्स फोल्ड है और नीचे बेल बॉटम पैंट्स, जिसका फ्लेयर इतना ज्यादा है कि लगता है हवा में उड़ जाएगा। वो जमाना जब गोविंदा के कपड़ों का मतलब फैशन आइकॉन था, जितना ज्यादा कलर उतना ज्यादा स्टाइल, रेड पैंट, ग्रीन शर्ट और ऊपर से व्हाइट शूज, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल 100% एकदम हाई फाई। आज के वक्त में ऐसे फैशन करके देखिएगा कितने यूनिक लगोगे आप। और भाई आज जहां ब्रांडेड कपड़ों के चक्कर में लोग घंटे लगाते थे, तब एक लेदर या फिर फ्रंटलाइन की बनियान में भी बंदा हीरो लगता था। फैशन का असली मजा तब था, ट्रेंड फॉलो नहीं ट्रेंड बनाया जाता था। ये जो लोग सोचते हैं कि ओवरसाइज फैशन ना तो नया नया है आज के वक्त में, जो कि सब ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, उनको कहना कि एक बार 90s के हीरो को देख लो, गोविंदा भाई का वार्डरोब देख ले, तो समझ जाएगा कि असली ओवरसाइज क्या होता था। तो ओवरसाइज का फैशन कुछ आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन बदलाव के साथ बदलते हुए थोड़ा अलग तरीके से आ चुका है। सो 90s के इस शो में हम बात करेंगे आज ऐसे ही कुछ 90s की बेहतरीन यादों की, जिससे आप ना तो अपने आप 90s की गलियों में खो जाओगे। सो और भी बहुत सारी बातें होगी 90s की और प्यारी प्यारी मुलाकातें भी होगी। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी होती थी, पर स्टाइल ना वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता था। लड़कों ने पैंट का बॉटम टेलर से नैरो करवाया था और गर्ल्स रिबन्स बटरफ्लाई क्लिप्स का कॉम्पिटिशन करती थी। और याद है वो लाइट वाली डिजिटल वॉच, अगर क्लासरूम में किसी के पास ऐसी वॉच रहे तो वो बंदा ना तो सब यूनिक लगता था और एकदम उसका ऑरा पूरे क्लासरूम में जम ही जाता था। लंच टाइम में जो टिफिन का एक्सचेंज होता था उसमें एक और एक्सचेंज भी था, वो था स्टाइल आइडिया का। हेयर स्टाइल बनानी थी हमें मिथुन दा जैसी, शाहरुख खान जैसी या तो फिर गोविंदा जैसी, लेकिन पापा करवाते थे एकदम बारीक बारीक और बारीक सी हेयर स्टाइल। पापा लोगों का अलग ही था यार, बच्चे चाहते थे कि बाल बढ़वाए, पापा कहते थे कि बाल कटवाए। स्कूल के बाद तो यार असली सीन होता था जब फोल्डेड जींस, हाफ शर्ट और बैक पॉकेट में वो एटीट्यूड वाला कॉम्बो। भाई स्कूल छोटा था पर फैशन का सिलेबस फुल ऑन।

0: 90s में फैशन का सबसे बड़ा गुरु कौन था? बॉलीवुड, और कौन ही होगा। 90s वाले शो में आरजे अदनान आपके साथ है।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है आरजे अदनान। अब एमजीएम पे सुनो धमाल करें ये स्पेशल।
0: जो सलमान खान ने पहना वो ही अगले महीने के बर्थडे पार्टी का अपना आउटफिट होता था। याद है आमिर खान का रंगीला वाला लुक, बनियान वाला? उस दौर में ना तो गली के हर एक लड़के का एक ही सपना था कि यार ऐसी बॉडी चाहिए, इस वजह से वो जिम ज्वाइन करता था। और हीरोइन की बात करें, माधुरी दीक्षित के लहंगे या करिश्मा कपूर का वो स्पेशल ड्रेस, सब कुछ एकदम ड्रीमी ड्रीमी सा होता था। वो याद है आपको, तुझे देखा तो ये जाना सनम में काजोल का व्हाइट सूट एक टाइम पर लड़कियों का सपना था। मूवी रिलीज के बाद टेलरिंग शॉप में फुल ऑन रश हुआ करता था, क्योंकि भैया डीडीएलजे वाला सूट चाहिए था मुझे, बनवाइए। फैशन आइकॉन ना तो फिल्मों के नाम से शुरू होते थे, और जो फिल्म के अंदर जिस एक्टर ने जो ड्रेस पहना है वैसा ही ड्रेस लोगों को दिवाली, ईद या अपने बर्थडे पर चाहिए होता था। और भाई सबसे खास बात तो यार, हम कैसे इस शख्स को भूल सकते हैं, फैशन आइकॉन का हीरो यानी कि असली हीरो SRK शाहरुख खान। और शाहरुख खान का और 90s वाला एक बेहतरीन लुक, जो आज भी ना तो उस लुक के ऊपर लोग फिदा हो जाते हैं। वो शर्ट के नीचे टर्टल नेक स्वेटर वाला SRK वाला लुक एकदम किंग स्टाइल लगता था। तो यही तो था भाई 90s का आइकॉनिक सबसे बेस्ट फैशन स्टाइल। आज भी ना तो ये फैशन स्टाइल बहुत ट्रेंडिंग में है, बट शाहरुख खान का जवाब ही अलग था। तब तक आप भी ना तो आपके 90s के फैशन की गलियों में घूम के आइएगा, और 90s से कुछ बेहतरीन गाने एंजॉय कीजिएगा। लौट कर आता हूँ कुछ ही देर के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: 90s का फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था, एक्सेसरीज का भी अलग ही क्रेज था। आरजे अदनान आपके साथ है आपको संडे के दिन 90s के सफर पर ले जाने के लिए।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है आरजे अदनान, अब एमजीएम पे सुनो धमाल करे ये संडे स्पेशल।
0: ब्लैक रबर बैंड जिसे बॉयज अपने हाथों में पहनते थे, या वो चेन वाली वॉलेट, लगता था जैसे कोई अंडरवर्ल्ड का स्टाइल आइकॉन हो। और लड़कियों की तो बात ही अलग थी यार, कलरफुल हेयर बेड्स, बेडेड चॉकर्स, और एक टाइम पे वो टैटू स्टिकर जो कि स्कूल के पीछे मिला करते थे, यानी कि टेम्पररी टैटू, या तो फिर वो च्युइंगम के अंदर एक छोटे से टैटू आया करते थे जिसके अंदर पावर रेंजर, स्पाइडरमैन, इन जैसे हीरोज की फोटो हुआ करती थी। और भाई फ्रेंडशिप बैंड का तो बात ही अलग थी यार, हर एक ग्रुप का एक स्पेशल कोड होता था, जिसके पास सबसे ज्यादा बैंड होता है वो सबसे पॉपुलर बंदा होता है अपने स्कूल का। वो आपको याद है प्लास्टिक गॉगल जो कि गांव के मेले में मिला करते थे, आज के जैसे गॉगल नहीं थे, एकदम ब्लैक कलर, ब्राउन कलर के, एकदम कलरफुल हुआ करते थे, पिंक कलर, रेड कलर, और ये पहनकर घूमने का मजा ही अलग था। आज के वक्त में ना तो ये सब चीजें पहनकर घूमे तो आपको लोग ऐसे घूर के देखेंगे, लेकिन 90s के वक्त में ना तो ये सब चीजें एकदम कॉमन थी। एक अलग ही ऑरा था सनग्लासेस का, और एक स्वैग हम कहेंगे आज के जमाने की जबान में, तो स्वैग था उस सनग्लासेस का। भले जब सुविधाएं कम थी लेकिन खुशियां बहुत थी यार, आज सुविधाएं बहुत है लेकिन खुशियां कम है। आज हमारे पास फैशन के या एंटरटेनमेंट के कितने सारे ऑप्शन है लेकिन खुशियां थोड़ी कम है, तो यही तो एक खास बात थी 90s की। तो तब तक के लिए आप और भी 90s के गलियों में घूम कर आइएगा, कुछ ही देर के बाद एक सफर पर मैं आपको ले जाऊंगा 90s वाले, सो बने रहिएगा मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: 90s का वक्त और शादियों का फैशन एक अलग तरीके का स्टाइल भी था। आरजे अदनान आपके साथ आया है आपको 90s के सफर पर ले जाने के लिए ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है आरजे अदनान। एमजीएम पे सुनो धमाल करें ये संडे स्पेशल।
0: बॉयज के पास होती थी वो शाइनी सिल्वर वाली शर्ट या फिर फुल स्लीव्स कुर्ता जिसमें बॉर्डर में चमकी का काम किया होता है, और गर्ल्स का वो लहंगा, वो इतना हेवी होता था कि संभालते संभालते लड़कियां थक जाती थी। और माँ जो पहनती थी वो साड़ी, उस पर नानी के दिए झुमके और छोटी बिंदी, सब कुछ मिलके बनता था एक परफेक्ट 90s वाला वेडिंग लुक। और हाँ, वो स्टूडियो फोटोग्राफी तो आपको याद ही होंगे ना, जहाँ बैकग्राउंड में ताजमहल होता था, हाथों में फूल होता था और पोज आंखों में शर्माहट और हाथ का एंगल फिक्स, एकदम 90s वाला स्टाइल। ऐसे फोटो ना ताजमहल के सामने स्टूडियो में निकाल वाले आपके एल्बम में तो होगे यार, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके एल्बम में ना तो 90s के दौर में ऐसे स्टूडियो में निकाले वाले फोटो होगे। भले आज मोबाइल में हम बैठे बैठे कितने भी फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन 90s के दौर में शादी हो और फोटो ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग तो तैयार इसलिए हुआ करते थे या कहीं बाहर जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए इसलिए एक्साइटेड हुआ करते थे कि वहां पर उन्हें फोटो क्लिक करने का मौका मिले। सो एक फोटो क्लिक करने की खुशी हजार गुना होती थी। आज हम हजार फोटो क्लिक करते हैं उसमें से एक भी फोटो हमारी अच्छी नहीं आती, ऐसा हमें लगता है। और नखरे तो बहुत होते हैं आज के वक्त में फोटो निकालने के। तो आपका ना तो 90s का कौन सा ऐसा मोमेंट है जो कि बहुत आपको याद आता है, बताइए मुझे डीएम कीजिए इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। बाकी तो 90s वाला शो ऐसे एंजॉय करते रहिए हर संडे मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ। और ये 90s वाले सेगमेंट में आपको और क्या कुछ चाहिएगा ये मुझे जरूर बताइएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। बाकी तो सुनते रहिएगा एमजीएम 90.8 एफएम।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: Master tomorrow's tech today, not someday. Make today's one right decision, tomorrow's bright future. Join Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and IT at NGM University for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry projects start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac.in or call on 9371174254.
3: Admission open, MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.
4: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
5: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
6: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
5: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
4: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
7: MGM 90.8 FM साथ

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 Native FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 Native FM, साथ है तो बात है।

0: आवाज बनी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरिया
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफ एम 90.8।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM, साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

सीक्रेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक।

अब दूरी कोई न रहे, ये दूरियां। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात, MGM 94 एफएम, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है।